0: Mirchi. It's hot.
1: Saathi re, thoda theher ja. Abhi raaste kuch.

लटीना चिकनी चमेली कट कट रीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यूं क्यों किया बर्बाद तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद हैं।

माइंड डोंट एंग्री मी माइंड इट। अरे मेरे जैसे डांस किसको आता है, कोरियोग्राफर को मैं ही सिखा दे।

Mirchi. It's hot.

अगर आपके पैसे ना जाने कहाँ खर्च हो जाते हैं, पैसे आपके कम हो रहे हैं, या करियर में बहुत स्ट्रेस है, या आपके रिलेशनशिप में भाई लड़ाई ज़्यादा प्यार कम हो रहा है, तो थोड़ा टाइम ना अपने बाथरूम में स्पेंड करो या किचन में. यू नो आई एम सेइंग दैट राइट, क्योंकि वास्तु के हिसाब से अगर आपके घर में कोई भी ऐसा टैप है जो लीक कर रहा है या कहीं से पानी टप टप टप टप टप कर रहा है, उसका ये मतलब होता है कि आपके जो पैसे हैं वो ज़्यादा जल्दी खर्च हो जाएंगे, या रिलेशनशिप में जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ज़्यादा जल्दी खर्च हो रही है. और इसे ठीक करने का एक सिंपल सा तरीका है, अपने घर प्लमर को बुलाओ, वो जो लीकिंग नलका है आपका 480 साल पुराना, उसे ठीक कर दो एंड देखो कैसे हाउ योर फॉर्च्यून्स एंड योर लव लाइफ कंप्लीटली गेट्स बैक ऑन ट्रैक. एक बार ऐसा हो जाए ना तो मुझे थैंक यू बोलने के लिए, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट. आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो फाइंड मी ऑन इंस्टा, फाइंड मी ऑन द ग्राम, एंड व्हाटएवर यू डू, कहीं मत जाना, जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: वैसे तो आपने डिसाइड कर लिया था कि ऑफिस में आपने इस्तीफा दे ही देना है, बट दैट्स व्हेन यू रियलाइज दैट एक जो नई इंटर्न आई है वो इतनी हॉट है दैट बिकॉज ऑफ हर यू डिसाइडेड टू स्टे बैक. तो अगर आपकी जिंदगी में ऐसा ही कोई शेरी AF कन्फेशन है, दिस इज द टाइम टू मेक इट, क्योंकि आ गया है
1: द सीक्रेट बॉक्स.
0: आहा आहा. और मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हाय मिस्ट्री कॉलर.
2: हाय रोशी,
0: कैसे हो आप?
2: आई एम वेरी गुड. आप
0: झूठ मत बोलो, आप एक नोटी बॉय हो, आपने बहुत नोटी काम कर ली है और आप कन्फेशन करने का टाइम हो गया आपका, है ना?
2: हाँ जी. तो मेरा कन्फेशन एक्चुअली ये है कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ, एक्चुअली कॉलेज हॉस्टल में, एंड जो मेरा हॉस्टल है, मेरे हॉस्टल के एग्जैक्टली सामने गर्ल्स हॉस्टल होता है. तो जब भी मैं नहा के शावर लेके अपने रूम में आता हूँ, मैं टॉवल पहन के आता हूँ, एंड एक दिन मैंने नोटिस नहीं किया था बट मैंने अपना कर्टन खुला छोड़ दिया था, एंड आई वॉज चेंजिंग, एंड देन मैंने नोटिस किया कि एग्जैक्टली मेरे हॉस्टल रूम के सामने एक लड़की मेरे को घूर रही. आई वुड नॉट से कि मुझे बुरा लगा. तो उसके अगले दिन मैं जब आया, मैंने कर्टन को बंद नहीं किया एंड मैंने टॉवल खुद उतार दिया. तो ये सब
0: वो लड़की वहाँ पे थी, आपने एंटिसिपेशन में टॉवल उतार के खड़े हो गए बस ऐसे फुल मॉन्टी?
2: वो थी, एंड अब वो 4-5 दिन से रोज आ रही है. हमें एक दूसरे का नाम नहीं पता, कुछ सोशल मीडिया नहीं पता, बट दिस इज दी ओनली कॉन्टेक्ट वी हैव.
0: वाओ, दिस इज अमेजिंग. मैं उसे जानता नहीं हूँ, मैं जानता नहीं उसका नाम क्या, बट मैं उसके मेजरमेंट्स आपको बता सकता हूँ रोशी, इन केस उसके लिए कुर्ता पजामा बनाना है तो. दिस इज क्रेजी. तो अब इसका करना क्या है ब्रो? लाइक आर यू गोना लाइक लुक एट ईच अदर एंड देन डू नॉटी थिंग्स विद योर सेल्व्स? की सीन क्या?
2: आई डोंट नो, आई विल जस्ट गो विद द फ्लो.
0: राइट सर फ्रेड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्फेशन है. आपको रोशिफाई कर दूं?
2: कर दो.
0: कर दो बोल रहा है, ये ले.
3: You've been roshified.
0: अच्छा वैसे दिस एंटायर थिंग साउंड्स रियली किंकी. मेरे हिसाब से तो यू शुड जस्ट गो फॉर इट, एंड व्हाइल यू आर एट इट ना, एक बड़े से A4 शीट पे अपना नाम लिख देना. अगली बार आपको देख के टर्न ऑन हो रही होगी, वो शीट दिखा देना ताकि उसे पता तो चल जाए किसके नाम को देख के वो टर्न ऑन हो रही है. ऑल द बेस्ट टू यू माय डार्लिंग. अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही कोई खुराफात चल रही है एंड यू वांट टू मेक दैट सीक्रेट कन्फेशन, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: Bollywood ko samajhna hai to एक बात मान लीजिए, अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। जिस फिल्म को इंडस्ट्री सेफ समझती है, ऑडियंस उसे इग्नोर कर देती है, और जिस फिल्म को देखकर पहला रिएक्शन आता है कि भाई ये क्या बनाई है, कभी कभी वही थिएटर्स में हंगामा कर देती है। Whether it's a Dhurandhar 2, Awarapan 2, Toxic या फिर हैवान, and then of course you got the Dhamals, the Cocktails and the Welcome to the Jungles. मतलब audience एक अजीब सी demand कर रही है, surprise भी चाहिए और entertainment भी चाहिए, बस एक चीज नहीं चाहिए, predictability. शायद Bollywood की सबसे interesting बात आज यही है। Industry future की तरफ भाग रही है, लेकिन audience कभी-कभी उसे पास्ट की तरफ खींच लाती है। जैसे आज शान की आवाज, सैफ अली खान लगभग 2 दशक बाद, और हैवान से ही इस बार का काउंटडाउन होता है किकस्टार्ट। दिस इज गाना नंबर 20, मेरे हीरो है वो।
3: लेके जन्म पहला पहला कदम, जब चलते हैं हम उंगली थामे कोई,
4: लिख रहे हो ना?
3: तुम भी गाओ।

जब कोई गाना खत्म होता है हम तुरंत उस टाइम पर कुछ बोलते नहीं, बस 2-3 सेकंड्स की वो खामोशी होती है। ना लिरिक्स की कोई एक लाइन दिमाग में अटकी होती है, ना म्यूजिक का कोई पर्टिकुलर पीस, बस आवाज अंदर कहीं रुक गई होती है। तो फिर आओ, मेरे लिए उन्हीं गानों में से एक है। और शायद म्यूजिक की सबसे खूबसूरत बात भी यही है, हर कनेक्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं होता। इसलिए आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, म्यूजिक हटाने वाला हूं, प्रोडक्शन हटाने वाला हूं, सिर्फ आवाज आप तक पहुंचाना चाहता हूं।

बस अभी जो सुना उसमें अरेंजमेंट नहीं है, फिर भी आवाज पहचान में आ जाती है। आवाज है अरमान मलिक की। एक वक्त था जब रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए बॉलीवुड की सबसे इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल यंग आवाजों में अरमान का नाम आता था, और फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक में अपनी अलग दुनिया बनाई। और शायद इसलिए नंबर 18 पर आता हुआ ये ब्रांड न्यू गाना सिर्फ एक नई एंट्री नहीं लगती, कभी कभी कमबैक अनाउंसमेंट से नहीं होता, बस आवाज दोबारा सुनाई देती है। और आप खुद समझ जाते हैं, प्रेम कीटाणु से अरमान मलिक इज बैक विद अ सॉन्ग कॉल्ड कहो तो, एंड इट डेब्यूज ऑन नंबर 18।

प्रवीण के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi. It's hot. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 17.

मदहोश नाम ही ऐसा है कि वॉल्यूम बढ़ाने से पहले ही दुनिया थोड़ी धीमी पड़ जाती है और ये एक कॉम्प्लीमेंट है और यही कॉम्प्लीमेंट बहुत सारे सिंगर्स को भी दिया जा सकता है और वैसे ही एक सिंगर हैं जिनकी मैं बात करना चाहता हूँ, नाम है मोहम्मद इरफान। यार इरफान की आवाज में हमेशा से एक अजीब क्वालिटी थी, वो आवाज आपको इम्प्रेस करने नहीं आती थी, वो सीधा मूड बदल देती थी। फिर मोहब्बत याद है आपको, कितनी बातें की हैं मैंने इस गाने की इस शो पर। सॉन्ग वाज संग बाय 3 सिंगर्स, अरिजीत सिंह, साइम भट्ट एंड मोहम्मद इरफान। 3 आवाजें एक गाना, अरिजीत एक दास्तान बन गए। इरफान की आवाज दास्तान बनने से पहले ही जैसे खामोश हो गई, लेकिन आवाज कहीं नहीं गई।

0: कुछ होता है यार दिल में, क्या आवाज है, और शायद दर्द यही है। कभी कभी टैलेंट का खत्म होना प्रॉब्लम नहीं होता, बस उसके पास पहुंचने वाले वो मौके खत्म हो जाते हैं। इस हफ्ते धमाल 4 का कहर संग बाय गुरु रंधावा नंबर 16 पर है। लेकिन क्योंकि हम इरफान की बातें कर रहे थे, कुछ गाने वक्त के साथ पुराने नहीं होते, वो बस आप ही का एक पुराना वर्जन वापस ले आते हैं। इरफान के लिए वो वक्त था एक विलन का। मिथुन ने तुम ही हो के बाद एक नई आवाज को चुना और बंजारा में मोहम्मद इरफान वो आवाज बन गए। दिस सॉन्ग फ्रॉम एक विलन इज माई रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कुछ फ्रेंचाइजेस को रीबूट करने की जरूरत होती है और कुछ को अपना असली चेहरा याद दिलाने की। There's a film called Race, जिसे आप नहीं भूले और मैं भी नहीं भूला, लेकिन रेस शायद उस दूसरी कैटेगरी में आती है, क्योंकि पहली दो फिल्म्स में गाड़ियां तेज थी, लोग उससे भी ज्यादा तेज थे, लेकिन असली मजा स्पीड का नहीं था, मजा था इंफॉर्मेशन का। आपको कुछ पता है और कैरेक्टर को कुछ और ही पता है, और हर 10 मिनट में फिल्म आपको सडनली बताती थी कि जो आप समझ रहे थे वो बिल्कुल गलत था। एंड देन आई सलमान खान की रेस 3। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ डायरेक्शन या कास्टिंग की नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि रेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो कहीं रास्ते में ही छूट गया, एंड दैट वाज ऑडियंस को डाउट में रखना। अब रेस 4 की बात हो रही है, रीबूट की बात हो रही है, और कास्टिंग पॉसिबिलिटीज काफी इंटरेस्टिंग है। देयर कुड बी आमिर खान, देयर कुड बी टाइगर श्रॉफ, देयर कुड बी सिद्धार्थ मल्होत्रा, विच ऑल्सो मीन्स कि स्केल हो सकता है, एक्शन हो सकता है, बड़े स्टार्स हो सकते हैं। लेकिन असली सवाल अब भी एक ही है, क्या ये रेस होगी या रेस के नाम से एक और एक्शन फिल्म होगी? क्योंकि रेस का मैजिक तभी वापस आएगा जब फिल्म खत्म होने के बाद आप भी सोचेंगे कौन किस पर भारी पड़ा। वेल, लेट मी लीव यू विद दैट थॉट एंड ऑल्सो लीव यू विद माई स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग ऑफ द वीक, विच हैपेंस टू बी फ्रॉम द फिल्म दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, बेनी दयाल और शालमली खोलगड़े की आवाज में। दिस इज लत लग गई। स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

महीनों से जिस गाने ने इस काउंटडाउन पर अपना बसेरा बनाया हुआ था, आज उसके सामने वक्त ने एक बार फिर एक नया फैसला लिखा है। कहरा हुआ इज ऑन नंबर टू। लेकिन नंबर वन की कहानी सिर्फ एक चार्ट पोजीशन की नहीं है यार, एक पुराना गाना वापस आता है और हमें लगता है कि हम गाना सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम अपनी पुरानी जिंदगी सुन रहे हैं। तेरा मेरा रिश्ता उन्हीं गानों में से 19 साल पहले पहली बार सुना था, लेकिन फिर हम बदले, शहर बदले, लोग बदले, जिंदगी ने अपना साउंड ट्रैक बदला, लेकिन वो धुन कहीं नहीं गई। और जब आवारापन 2 ने उसे दोबारा हमारे सामने रखा तो हमने सिर्फ एक पुराना गाना नहीं सुना, हमने देखा कि उस गाने के अंदर हमारा कौन सा वर्जन अभी भी दबा हुआ था, अभी भी जिंदा था। तेरा मेरा रिश्ता ने आवारापन को सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं दिया, उसने फिल्म को एक मेमोरी दी है। और आज वही मेमोरी महीनों पुराने नंबर वन सॉन्ग गहरा हुआ को उसकी जगह से उतार रहा है। इस हफ्ते का नंबर वन सॉन्ग तेरा मेरा रिश्ता कुछ धुनें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बस हम उनमें खुद का एक नया हिस्सा ढूंढ लेते हैं।

0: कुछ गाने हम चूज करते हैं और कुछ गाने पता नहीं कब हमें चूज कर लेते हैं, फिर वो किसी सफर का हिस्सा बन जाते हैं, किसी याद का, किसी ऐसे वक्त का जिसे हम दोबारा जीना भी नहीं चाहते और पूरी तरह भूलना भी नहीं चाहते। शायद इसलिए हम हर हफ्ते यहां लौटते हैं। That's it for this episode of the Mirchi Top 20. Until the next time we meet, this is Suren, over and out.
1: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका। इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट काउंटडाउन ऑफ द वीक। This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। हफ्ते के टॉप 10 गानों में दो नई एंट्रीज हैं इस हफ्ते। हम अपना 90s एंड 2000s का कैसेट क्लासिक भी आपके लिए प्ले करने वाले हैं। All this and more at RJ Kanika on Instagram पर आकर stay connected with me। कोई गाना बताना है, सजेशन है, बिंदास आके हिट मी अप। शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10। बंजारी दे आर्टिस्ट का गाना, गाने का नाम है बरसात। दो हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद एक नई नवेली एंट्री, हितेन बादशाह का गाना फीचरिंग शर्वी यादव। गाने का नाम ही है बैंगर। दिस न्यू बादशाह ट्रैक डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। वदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
0: नंबर 10।

या भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए।

0: boy.
1: बादशाह की आवाज फीचरिंग शर्वी यादव, हितेन का प्रोडक्शन, गाने का नाम ही है बैंगर। दिस सॉन्ग डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। एक गाने को बैंगर सिर्फ वोकलिस्ट नहीं बल्कि प्रोड्यूसर बनाता है अपनी बीट से। इट्स टाइम टू मीट दिस बैंगर प्रोड्यूसर।
2: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: हेलो, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बद्दी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, फॉलो करें, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना शेयर करना है, बातें बतानी है, बिंदास आके हिट मी अप। पिछले 6 साल से जितने गाने बादशाह के इस शो पर डेब्यू करते हैं, जो मैं और आप सुनना बंद नहीं कर पाते हैं, उन गानों में एक नाम कॉमन होता है, वो नाम है हितेन का। हितेन इज अ सुपरस्टार प्रोड्यूसर जो बहुत रिपीटेडली बादशाह के साथ काम करने लगे हैं। बट अगर मैं उनका डिस्कोग्राफी देखना शुरू करूं तो इट्स नॉट जस्ट कि वो बादशाह के फेवरेट प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने किंग के साथ, MC स्क्वायर, पैराडॉक्स, रफ्तार जैसे आर्टिस्ट के साथ गाने प्रोड्यूस करें। तो फिर सोचने वाली बात ये है दैट हम प्रोड्यूसर पे इतना ध्यान क्यों नहीं देते हैं, बीट तो वही बना रहे हैं। उस पूरे गाने को पैकेज करना इस वे में दैट मैं और आप उसे सुनना बंद ना कर पाए, दैट इज द प्रोड्यूसर इन द हाउस एंड हितेन डिजर्व्स द बिगेस्ट स्पॉटलाइट। साल 2017 में दैट क्रिंज पॉप सॉन्ग बाय ढिंचैक पूजा, सेल्फी मैंने ले ली आज, वो इतना डाइजेस्टिबल वायरल गाना बना था बिकॉज हितेन ने उस गाने का मिक्स बनाया। वहां से लेके अब तक वो किसी एक लेन में स्टिक नहीं करे। बादशाह का गाना आवारा प्रोड्यूस किया एंड उसके बाद बादशाह की पूरी एल्बम एकता राजा इज बीन प्रोड्यूस्ड बाय हितेन, जिसमें करण औजला के साथ गाने हैं, अरिजीत सिंह एंड बादशाह का सोलमेट। This gorgeous song is produced by Hiten. And what's so amusing about all of this is कि वो किसी भी म्यूजिकल बैकग्राउंड से नहीं आते, पंजाब को बिलोंग करते हैं। उन्होंने प्रोडक्शन अपने घर पे वीडियोज देख के हाउ टू मेक बीट्स एक्चुअली सर्च करके सीखना शुरू किया, लोगों को रीच आउट करके फेसबुक पे, प्रॉपर DIY प्रोड्यूसर। पर अपने करियर में वो अपना सबसे बड़ा पिवट पॉइंट ये वाला गाना मानते हैं। साल था 2021, बादशाह ने हितेन को एक इंस्टाग्राम रील भेजी एक वॉइस नोट के साथ कि यार कुछ बीट बनाना इस पे। दिस वायरल ऑडियो बचपन का प्यार जो हर जगह चल रहा था, हितेन ने 30 से 40 मिनट में पूरा ऑडियो बनाया, भेज दिया बादशाह को एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। द सॉन्ग ब्लू अप लाइक क्रेजी। सो इन अ वे इसीलिए हितेन कहीं ना कहीं बादशाह को अपना गाइड मानते हैं, मोर देन एन आर्टिस्ट जिनके साथ वो काम करते हैं। बट माई फेवरेट क्वालिटी अबाउट हितेन एज अ प्रोड्यूसर इज दैट ही लेट्स अ सॉन्ग बी, वो गाने को सांस लेने देते हैं एंड दैट्स व्हाई ही इज द चोजन प्रोड्यूसर फॉर बादशाह, किंग। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो गाना भी इज व्हाट इट साउंड्स लाइक बिकॉज ऑफ इट्स प्रोड्यूसर। गाना संजू राठौड़ का है पर उसके प्रोड्यूसर हैं जी स्पार्क, जिन्होंने गुलाबी साड़ी भी प्रोड्यूस किया था संजू के साथ। हम रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, संजू राठौड़ की आवाज में जी स्पार्क की प्रोडक्शन, गाने का नाम है बैंगल्स। 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, बैंगल्स इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इन द टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
2: नंबर 8।

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: शाहरुख खान की आवाज है, गाने का नाम है गुच्ची। ऑल द हमारे दिमाग में अलग वीडियो चल रही है। दिस सॉन्ग डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने फरक का गाना सुना तारे, 5 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो, फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना शेयर करना हो बिंदास आके हिट मी अप। गाना नंबर 6 पर हमने सुना गुच्ची बाय अरूप खान, जिसको एक्चुअली हम सब ने इंस्टाग्राम से ही डिस्कवर किया है। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस सॉन्ग इज कि गाइस, ये गाना 2020 में आया था, लेकिन 2026 में ओनली बिकॉज ऑफ रवि किशन दिस सॉन्ग फाउंड इट्स मोमेंट। वो एक इवेंट पे स्टेज पर जा रहे थे और वहां जगह नहीं थी, तो एक बहुत ही क्वर्की साइड वॉक करी रवि किशन ने, वो एडिट विद गुच्ची ऑन टॉप ऑफ इट, वो हर जगह वायरल हो चुका है। एंड उस मीम की वजह से एक 6 साल पुराना गाना वापस हमारे काउंटडाउन में आ गया है। और ऐसा होता है, लाइक सोशल मीडिया वंस इन अ वाइल एक गाने को, एक आर्टिस्ट को हमारे ऑर्बिट में लाके खड़ी कर देती है, एंड दैट बिकम्स अ वेरी डिफाइनिंग मोमेंट फॉर एनी आर्टिस्ट। को सारा प्रेशर उन पे है, सारी आंखें उनकी तरफ है कि क्या ये वन हिट वंडर रह जाएंगे या ये इसके बाद कुछ करेंगे। एंड एक आर्टिस्ट के लिए बहुत प्रेशर वाला जोन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई रियली डोंट थिंक वन हिट वंडर इज अ बैड थिंग टू से। अगर आप उस गाने के रिस्पेक्ट में देखो तो वो गाना इतना अच्छा है कि कोई उसको इग्नोर नहीं कर पाया। बट यस, ऑब्वियसली इट रेजेस क्वेश्चंस कि इसके आगे क्या होगा। आई थिंक बहुत सारे आर्टिस्ट इस सवालों से गुजरे हैं, एंड वन ऑफ द नेम्स व्हिच आई थिंक इज अ पोस्टर बॉय ऑफ इट इज एपी टिल्लो। साल था 2020, ब्राउन मुंडे वाज एवरीवेयर। अचानक उस गाने की वजह से पूरी दुनिया उन्हें जानती थी, एंड हर किसी का यही सवाल था कि क्या ये वन हिट वंडर है या इसके बाद ये कुछ और बना पाएंगे। एंड फिर जो हुआ, दैट्स फॉर द हिस्ट्री बुक्स, राइट? आई डोंट थिंक एपी ने किसी भी सवाल का जवाब दिया, उन्होंने सिर्फ नए गाने रिलीज किए। इवन इफ ही वॉज बींग कॉल्ड वन हिट वंडर, तो उन्होंने वो उसको अपने फेवर में लिया और दिल नू समर हाई जैसे गाने बैक टू बैक रिलीज करे। एंड एवरी सॉन्ग जस्ट प्रूव दैट ही इज सो इन इट, एंड जनता ने भर भर के प्यार दिया उनके नए गानों को। सो यार, बीइंग कॉल्ड वन हिट वंडर इज नॉट अ बैड थिंग। ऑफ कोर्स अ प्रेशर देन बिगिंस कि इसके बाद क्या करना है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। एपी टिल्लो का हिट मोमेंट अलोंग विद गुरिंदर गिल, शिंदा कालो, जी माइनर, 2020 में आया ये गाना ब्राउन मुंडे, टिल डेट इज लाइक एन एंथम फॉर एवरीवन। ब्राउन मुंडे इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: मैड वाइब, मैड सॉन्ग, गुरिंदर गिल, एपी टिल्लों, शिंदा कालो जी माइनर का गाना, गाने का नाम है ब्राउन मुंडे. दिस वॉज अ बिगिनिंग ऑफ मैनी ग्रेट थिंग्स फॉर पंजाबी म्यूजिक, जहाँ पे फीलिंग बहुत देसी है पर प्रोडक्शन बहुत इंटरनेशनल था. आई थिंक दैट्स समथिंग आई कैन से अबाउट द नेक्स्ट सॉन्ग ऑन द काउंटडाउन एज वेल. अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी. एक फोक मेलोडी को इतनी ऊबर कूल प्रोडक्शन में पैकेज किया है. पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जंप करके उड़ी उड़ी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4।

0: बंजारे की आवाज, उन्हीं के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है बैरन। जब भी गाना चल रहा होता है मुझे लगता है ये गाना बंद ही ना हुए। सच इज द इफेक्ट ऑफ दिस सॉन्ग। 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है। दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनेका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKaneka। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। पर कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो नए नहीं होते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तो बहुत फेमिलियर साउंड करते हैं। दैट हैज टू बी अ क्लासिक। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है सानी धापा बाय द वन एंड ओनली कलोनियल कजिन्स। गाना 1996 में आया था बाय द सेल्फ टाइटल डेब्यू एल्बम कॉल्ड कलोनियल कजिन्स। दिस एल्बम वॉज सच अ रेजर। दिस वेंट प्लैटिनम, ये चार्ट्स पे रहा एंड कलोनियल कजिन्स इंडी पॉप स्पेस में घर घर का नाम बन गए थे। बट व्हाट्स वेरी इंटरेस्टिंग इज दैट अगर आप इन दोनों आर्टिस्ट को देखें, हरिहरन जी एंड लेस्ली लुइस, ये दोनों म्यूजिक के इतने डिफरेंट स्पेक्ट्रम से आते हैं, दैट मेड कलोनियल कजिन्स सो इंटरेस्टिंग एंड टिल डेट वन ऑफ द मोस्ट फ्रेशेस्ट एक्ट जो हमने पॉप सीन में देखा है। एक तरफ है हरिहरन जी, अ क्लासिकल सिंगर, दूसरी तरफ यू गॉट लेस्ली लुइस हु इज ऑल अबाउट द रॉक एंड रोल। लेस्ली लुइस ने बहुत सारे वेस्टर्न प्रोडक्शन एंड साउंड्स इंट्रोड्यूस करवाया एंड हरिहरन जी इज द मोस्ट ग्राउंडेड क्लासिकल वॉइस दैट वी हैड नोन। एंड इन दोनों ने मिलके जब कलोनियल कजिन से सानी धापा किया, एवरीबडी जस्ट सैट एंड आज तक भी आई एम इन ऑ। मैं जितनी बार ये गाना सुनती हूँ, इट स्टिल साउंड सो फ्रेश कि बिल्कुल अभी प्रोडक्शन हुआ है इस गाने का। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। वन थिंग आई एब्सोल्युटली लव अबाउट दिस सॉन्ग इज कि ये एक बॉक्स में नहीं बैठा है। क्लासिकल एंड रॉक के फ्यूजन की जगह है एंड सानी धापा इज अ प्रूफ ऑफ दैट। कलोनियल कजिन्स का 1996 का गाना सानी धापा इज अ कैसेट क्लासिक ऑफ द वीक। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

कहने को ये गाना 1996 में आया था, लेकिन आज 2026 में also I can say that it is one of the most experimental pop sounds out there. Hariharan ji and Leslie Lewis sir की आवाज में that was Sani Dhapa by Colonial Cousins on our cassette classic this week. At RJ Cunning on Instagram पर आओ और बताओ मुझे यार 90s 2000s के यही वाले गाने which still makes us feel like इंडी पॉप का गोल्डन एरा तो 90s एंड 2000s में था. Which is your favorite? मुझे आके बताओ. We might feature your song next week. Now back to the countdown. अगले वाले गाने की बारी. मिट्टा रॉर की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, मिट्टा रॉर एंड स्वरा वर्मा की आवाज में. गाने का नाम है शीशा. 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. शीशा इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 3.

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची
1: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो वेयर वी ब्रिंग टू यू द हॉटेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 पॉप गानों में दो नई एंट्रीज थी। हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक भी हमने आपके लिए प्ले किया। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, एक क्विक रीकैप लेते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। बंजारे का बरसात दिस वीक ऑन गाना नंबर 10।
2: प्यारे सा मिलना नहीं, कौन मेरे जैसा जाएगी।
1: उसके बाद एक नई नवेली एंट्री हुई, बादशाह हितेन शर्वी यादव का बैंगर डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। संजू राठौड़ का बैंगल्स 13 हफ्तों से गोइंग स्ट्रॉन्ग दिस वीक वॉज ऑन गाना नंबर 8। कहने तो नहीं चाहिए बट दिस सॉन्ग इज लाइक अ फेवरेट। फरक का तारे 5 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर गोइंग स्ट्रॉन्ग दिस वीक, तारे वाज ऑन गाना नंबर 7। अरूब खान का गुच्ची हैज मेड अ डेब्यू, एंट्री मारी है सीधा ऑन गाना नंबर 6। अनीस सरकार हृदय का उड़ी उड़ी स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, उड़ी उड़ी दिस वीक वाज ऑन गाना नंबर 5। बंजारे का बैरन 23 हफ्तों से गोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
2: मुन्ने सांब सांब रखे तेरे झंझरा के जोड़े मेरी गेल।
1: मिट्टा रोर का शीशा स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक। इस बार वाले जो टॉप दोनों गाने हैं आपने एक्सपेक्ट नहीं करे हैं बिकॉज काफी रीशफल हुआ है। पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके हर्ष नुस्सी का गाना, गाने का नाम है साडी सुन। हर्ष नुस्सी दीप क्लेयर के लिरिक्स सुनी की कॉम्पोजिशन। ये गाना एक पोजीशन ऊपर जंप मार के दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो ओनो सॉन्ग ऑफ द वीक इज अ ओटीटी रिलीज। गाने का नाम है दरमिया, रेखा भारद्वाज राघव कौशिक की आवाज, राघव कौशिक का म्यूजिक। दिस इज फ्रॉम मुसाफिर कैफे, अ वेरी क्यूट लव स्टोरी बट अ इवन क्यूटर सॉन्ग। दरमिया डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 1। तो ये दोनों गाने बैक टू बैक, साडी सुन नंबर 2 पे है फिर दरमिया नंबर 1 पे, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 2।

आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

साथ मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई बजा

0: Energy. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना।

नमस्ते सलाम सत श्री अकाल एंड अ वेरी मिर्ची गुड मॉर्निंग टू यू. मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में एंड यू आर ऑफिशियली ट्यून्ड इनटू मिर्ची मॉर्निंग्स. यहां पर सुबह की कॉफी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, ओपिनियंस और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और एनर्जी और वाइब उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं. अनफॉर्चुनेटली कोई वॉल्यूम का बटन नहीं होता है क्योंकि बढ़िया वॉल्यूम पे मिर्ची लगाने में ज्यादा मजा आता है. और आज की मॉर्निंग में हमारा फंडा ये है कि लाइफ में सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो तो गूगल मैप्स की जरूरत क्या पड़ेगी. थोड़ा सा लॉस्ट होना भी जरूरी होता है कभी कभी लाइफ में, तभी तो लाइफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज से भर जाती है. सो वेदर यू आर ड्राइविंग टू वर्क, ड्रॉपिंग द किड्स ऑफ टू स्कूल, रशिंग फॉर दैट ट्रेन, या फिर प्रिटेंडिंग यू आर वर्किंग फ्रॉम होम व्हाइल एक्चुअली मेकिंग योर अदरक वाली चाय, आई सी यू एंड आई एम गोना बी विद यू फॉर फ्यू आवर्स फ्रॉम राइट नाउ, क्योंकि तुम्हारे दिन को थोड़ा सा मिर्ची का तड़का लगाने की जरूरत है. अभी फटाफट से जाकर मुझे फॉलो कर लो. मिर्ची प्रिंस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 mirchi, that's 9033 6472 44, and tell me what's happening in your world. Abhi chalate hain mirchi dar bangers for you. Stay tuned and stay hot.

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रसला तुम्हारे साथ में, एंड इट्स टाइम टू रिवाइंड द क्लॉक ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, बिकॉज आज का दिन हिस्ट्री में काफी इंटरेस्टिंग था. बैक इन 1664 द डच सरेंडर्ड न्यू एम्स्टरडम टू द इंग्लिश, एंड यस दैट टेरिटरी इवेंचुअली बिकेम न्यूयॉर्क. And then 1900 में a devastating hurricane hit Galveston, Texas, becoming the deadliest natural disaster in US history. 1941 में German and Finnish forces began the brutal 872-day siege of Leningrad during World War II. Fast forward to 1966, Beam Me Up Scotty, Star Trek premiered on American television for the very first time. And 1974 में President Gerald Ford granted former President Richard Nixon a full pardon over Watergate. And lastly, 2022 May Queen Elizabeth II passed away at 96. Oh, and today is also International Literacy Day. A reminder that reading and writing can literally change your life. And that was History Rewind for the day. मिर्ची का तड़का लगाकर मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. और अगर मुझे एक्स और इंस्टाग्राम पर ढूंढना है तो मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033647244. राइट नाउ मिर्ची दर बैंगर्स की तरफ चलते हैं. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसला, तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स पर वेदर का हाल चाल। राइट नाउ वी आर सिटिंग एट 61 डिग्रीज फारेनहाइट। इट्स मोस्टली क्लियर, लेकिन हाँ, विंड की वजह से इट्स फीलिंग क्लोजर टू 60 डिग्रीज फारेनहाइट, यानी कि हवा जो है वो थोड़ा सा डिग्री कम करके दिखा रही है तुमको। एंड द गुड न्यूज इज जीरो रेन वॉज देयर इन लास्ट 24 आवर्स एंड देयर इज जीरो प्रेसिपिटेशन एक्सपेक्टेड ओवर द नेक्स्ट 24 आवर्स। सो अम्ब्रेला को आज भी छुट्टी दी जा सकती है। एज द डे मूव्स अलोंग we'll see partly cloudy skies around 5 PM. Temperature wise, we are starting at 59 degrees Fahrenheit and climbing all the way to a comfortable 82 degrees Fahrenheit. And the feels like range would be 58 से लेकर 82 degrees Fahrenheit के बीच में। तो temperature थोड़ा सा gaslight कर सकता है because humidity, sunlight and wind मिलकर उसे feel कुछ और करा रहे हैं। And compared to yesterday, it's pretty similar. Yesterday topped out at 81 degrees Fahrenheit and today we are looking at 82 degrees Fahrenheit. So mornings में light layer पहनना बनता है और afternoon में आते आते वो layer उतारना बनता है, इसीलिए बाहर जाओगे तो layer के player बनकर जाना, sunglasses अपने carry करना और साथ साथ में have plenty of water and wear your SPF 50++++ वाला sun protection. एंड ऑफकोर्स मिर्ची को बनाकर रखो अपने साथ में। और बताओ तुम्हारे एरिया में मौसम का क्या हाल चाल है। मैं हूँ प्रिसला एंड मुझे सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स पर मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर अगर मैसेज करना चाहते हो तो 9033 मिर्ची इज माई नंबर, दैट्स 9033647244। अभी चलाती हूँ तुम्हारे लिए मिर्चीदार बैंगर्स, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
1: Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है प्रिसिला और मिर्ची मॉर्निंग्स पर अब बारी आ चुकी है। सबसे पहले अ सीरियस अपडेट फ्रॉम वॉशिंगटन। देयर इज अ मेजर बैकलैश आफ्टर द यूएस मिलिट्री इनिशियली डिनाइड फुल वॉर बेनिफिट्स टू द विडो ऑफ एयरफोर्स मेजर एलेक्स क्लिनर। ऑफिशियल्स क्लेम हिज कॉम्बैट डेथ अगेंस्ट ईरान डिडंट क्वालिफाई बिकॉज कांग्रेस हैजंट फॉर्मली डिक्लेयर्ड अ फुल वॉर। थैंकफुली अथॉरिटीज एक्नॉलेज द एरर एंड आर फिक्सिंग इट। Our hearts go out to her. A true hero's family deserves total support. And number two, from back home, AIIMS Delhi installed a massive digital population clock and log use dekhte hi reh gaye. The live counter ticked past 1.47 billion. Guys, 147 crores. आई नो हम देसीज को ना क्राउड बहुत पसंद है, लेकिन एट दिस रेट फाइंडिंग पार्किंग एनीवेयर इन इंडिया विल बी अ मेजर प्रॉब्लम। एंड लास्टली इन स्पोर्ट्स, ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद टुक ऑन मैग्नस कार्लसन एट द ग्लोबल चेस लीग 2026। विशी सर वॉज होल्डिंग अ सॉलिड ड्रॉ बट फॉरगॉट टू हिट हिज क्लॉक बटन विद सेकेंड्स लेफ्ट, लूजिंग ऑन टाइम। ही चीकिली सेड विशी सर वॉज होल्डिंग अ सॉलिड ड्रॉ बट फॉरगॉट टू हिट हिज क्लॉक बटन आफ्टर सेकेंड्स लेफ्ट, लूजिंग ऑन time. He cheekily said, that was a pity. Vishy sir, even when we forget to hit submit on our Monday morning work tasks, we panic. You just gave us the ultimate chill vibe. Abhi mujhe follow karo, mera handle name hai Mirchi Pris, Instagram aur X par, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number 9033 Mirchi, that's 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में ऑन मिर्ची मॉर्निंग। एंड लिसन अप, लीक्ड फुटेज फ्रॉम द सेट्स ऑफ रणवीर सिंह नेक्स्ट मैसिव फिल्म द ज़ॉम्बी थ्रिलर प्रलय जस्ट ब्लू अप द इंटरनेट। रणवीर सिंह वाज स्पॉटेड फिल्मिंग इन मुंबई अलोंग साइड साउथ सेंसेशन कल्याणी प्रियदर्शन। लेकिन वेट, रॉकिंग लॉन्ग हेयर एंड ब्राउन हेयर, फैंस इमीडिएटली स्क्रीम्ड, वेट, इज दैट हमजा अली मजारी फ्रॉम धुरंधर? लुक, वेदर ही इज फाइटिंग गैंगस्टर्स और लिटरल ज़ॉम्बीज, रणवीर सिंह कीपिंग द एग्जैक्ट सेम हेयर इज सो रिलेटेबल। यू नो हाउ ही देसी इज फाइंड वन गुड हेयर डे ऑन अ फ्राइडे नाइट इन जर्सी एंड देन वी ट्राई टू मेक दैट सेम लुक स्ट्रेच ऑल द वे थ्रू संडे ब्रंच। Same energy. The movie is being directed by Jay Mehta. Yes, Hansel Mehta's son. So while the plot promises total pralay, aka full-on apocalyptic mayhem, Ranveer Singh's hair remains completely unbothered. ऐसे बॉलीवुड की गपशप के लिए मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है प्रिसला, सुन रहे थे मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। एंड इफ टुडे सितंबर द 8th इज योर बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हारा दिन एकदम मस्त हो यार। टुडे यू आर शेयरिंग योर स्पेशल डे विद सम वेरी स्पेशल आइकॉनिक पीपल। सबसे पहले वी हैव गॉट द पॉप आइकॉन पिंक, रैप स्टार विज खलीफा और स्ट्रेंजर थिंग्स के फेवरेट गेटन मातराज्जो, साथ साथ में ब्रिटिश एक्टर मार्टिन फ्रीमैन एंड स्क्रीम स्टार डेविड आर्केट। बेसिकली आज अगर तुम्हारी बर्थडे पार्टी है और इस कोड को बुलाया गया तो तुम्हारी पार्टी विल टर्न इनटू अ साइफाई मॉन्स्टर थीम पार्टी। और इतना ही काफी नहीं, आज है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका एंड इंग्लैंड मेडिवल वॉरियर किंग रिचर्ड द लायन हार्ट। सो आज के बर्थडे प्लान्स क्या है शेयर करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647 2 double 4. Stay tuned and stay hot. Yeah.

0: नाम है प्रिसिला, सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग। जरा पता करते हैं मिलकर कि आज का गोल्ड रेट अपडेट क्या कहता है।
1: RajJewels.com wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,400. $4,400 पर ट्राउंस के साथ आज सुबह गोल्ड की प्राइस ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं है। गोल्ड के प्राइसेस का बेनिफिट लेने के लिए, गोल्ड बार्स में इन्वेस्ट करने के लिए, 1 ounce, 10 ounce, 100 grams और किलो बार, PAMP certified gold and silver bar available at Raj Jewels. आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करें RajJewels.com के साथ। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
0: एंड देयर यू हैव इट। तुम्हें पता चला गोल्ड रेट अपडेट एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: के खराब तो झरना कहीं तेरी दुकान पे पंगा ना लूं मेरे साथ काफी हो गई बक बक
1: बाकी बातें पीने बाद
0: शुभ हुए बादशाह
1: बाकी बातें पीने

0: है सांबा, जिंदगी की बरसात है, आज रात है, टाइम पास है।
1: Hey there, good morning. मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे थे मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर, और अब टाइम है सितारों की बात करने का।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि, दैट ब्रिलियंट आइडिया कुकिंग अप इन योर हेड, स्टॉप एडमायरिंग इट, हिट पब्लिश, स्टार्ट बिल्डिंग। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक टर्कोइज, लकी नंबर इज 07। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वन टाइनी ट्वीक टू योर लिविंग रूम और अ क्विक पॉजिटिव अपडेट मेक्स होम फील लाइक अ 5-star स्पा। लकी कलर इज सनसेट पीच, लकी नंबर इज 24। जेमिनी यानी मिथुन राशि, योर चार्म इज एट 100 टुडे, यूज दोस स्मूथ वर्ड्स टू ब्रिंग योर कैओटिक टीम टुगेदर। लकी कलर इज नियॉन लाइम, लकी नंबर इज 11। कैंसर यानी कर्क राशि, फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस इज सोरिंग, सॉलिड डे फॉर मनी टॉक, बट भाई रीड द कॉन्ट्रैक्ट फाइन प्रिंट ट्वाइस। लकी कलर इज पर्ल सिल्वर, लकी नंबर इज 03। लियो यानी कि सिंह राशि, मून एंड जुपिटर आर थ्रोइंग अ पार्टी in your sign, steal the spotlight, own your room today. Lucky color is imperial gold, lucky number is 01. And Virgo yani kanya rashi, a quiet aha moment brings total clarity. Meditate, reset and knock out those pending tasks like a boss. Lucky color is mint green, lucky number is 18. That's it for your rashi zone part 1. Baki bachi rashiyon ko lekar aaungi thodi si der mein, tab tak tum suno ye mirchidar bangers aur jaakar mujhe follow karo. Pris is my handle name on Instagram and X, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp par agar connect karna chahte ho to number likho 9033 mirchi, that's 9033 647224. Stay tuned and stay hot.

0: वेलकम बैक, मेरा नाम है प्रिसिला, तुम्हारे साथ हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स पर, लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए राशि जोन पार्ट टू।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: सबसे पहले लीब्रा यानी कि तुला राशि, अ स्ट्रेसफुल फेज फाइनली रैप्स अप। हिट अप योर स्क्वाड टुनाइट, दे'ल रिमाइंड यू हाउ ऑसम लाइफ इज। लकी कलर इज कोरल पिंक, लकी नंबर इज 15। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, योर हसल इज गेटिंग हाई फाइव्स फ्रॉम द बॉसेस, ट्रस्ट दोज शार्प इंस्टिंक्ट्स एंड टेक चार्ज। लकी कलर इज क्रिमजन रेड, लकी नंबर इज 09। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, बिग मूव्स, न्यू होराइजन एंड द वर्ल्ड फील्स ह्यूज। Go grab your win. Lucky color is mustard yellow. Lucky number is 21. Capricorn yani makar rashi, sit down for a practical chat. Sorting out shared chores will lighten your load completely. Lucky color is slate gray. Lucky number is 04. Aquarius yani kumbh rashi, clear positive vibes everywhere. Focus on genuine connection and keep pushing forward. Lucky color is electric violet. Lucky number is 17. And Pisces yani ki mean rashi, keep it real in romance, trust the process and welcome those sweet positive shifts coming your way. Lucky color is sky blue. Lucky number is 02. And that's it for Mirchi Rashi Zone. Main hu Prisala, tumhare saath mein, mujhse connect karo. Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X. That is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: स्टॉप राइट देयर, क्योंकि मिर्ची मॉर्निंग्स के एंड होने का टाइम आ चुका है. इट्स योर गर्ल प्रिसिला विद यू रैपिंग अप टुडेस शो. लेकिन जाते जाते एक फाइनल माइंड ब्लोइंग पीस ऑफ न्यूज तो देना बनता है ना. फॉरगेट अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड रियल एस्टेट, द अल्टीमेट कैश काउ हैज जस्ट बीन अनलॉक्ड. A 67-year-old auntie from Colombia named Miriam turned her passion for neighborhood gossip into a full-fledged business. And this one's for all our Indian neighborhood aunties, because she's calling herself a professional chismosa, aka the official auntie gossip express in Spanish. She logs neighborhood secrets in a notebook, collects evidence, and actually charges people for the tea. Her biggest tea deal has earned her 700,000 pesos, and she claims it made her enough money to buy not one but two houses. Aur socho main tumhe ye sari gossips free mein deti hu. And guys, Chachi ji on your society WhatsApp group is doing it all wrong. She's spreading gupshups for free when she could actually have been buying luxury condos in Jersey City. Socho is bare mein aur apne aas pas ki aunties ko thodi si salah mashwara de do. And that's my time on Mirchi Mornings. Thank you so much for spending your mornings with me. बोले तो प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. अभी मेरे जाने का टाइम है, मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस पर. तब तक के लिए यू बी गुड एंड गो एंड फॉलो मी. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स. एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.
1: Mirchi, it's hot. Mirchi.

Mirchi. It's hot.

0: कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना कि आप कुछ पढ़ लेते हो और वो चीज जो है वो आपके दिमाग में जाकर एकदम सही जगह पर पिंच करती है। ऐसा ही कुछ मैंने कल पढ़ा, और जब मैंने पढ़ा ना तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने कहा यार ये तो मैं आपको सुना के रहूंगी।
1: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tuned in with me on Mirji. और मैंने ना चंद लाइन्स पढ़ी और मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो कितना रेजोनेट करता है यार लाइफ से। मैंने कहा कि यार आप बड़े शौकीन हो इन सारी चीजों के, तो आपको भी सुनाती हूँ ये चीज। तो बात कुछ ऐसी है कि एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितलियों का दीवाना था, थक कर आना स्कूल से फिर भी खेलने जाना था, बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था, रोने की वजह ना थी ना हंसने का बहाना था, क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था। देखा, लगा ना, वाकई में लगा ना, मतलब हम अपनी लाइफ में अलग ही अडल्टिंग का जोन जो है वो लेकर बैठे हुए होते हैं, अपनी लाइफ चल रही होती है, कट रही होती है, फिर एकदम से आप कुछ पढ़ लेते हो, आप कुछ देख लेते हो और फिर आपको लगता है ओ नो, हाँ यार वो भी क्या जमाना था और बचपन हमें जरूर याद आना था। तो चलो फिर थोड़ा और याद करते हैं 90 के जमाने को, और मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को उसी तरफ घुमाती हुई 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मेरा ना समीर सोनी पर बहुत बड़ा क्रश था एंड आई न्यू ही इज अ मॉडल क्योंकि मैंने ना उनकी एक झलक दूध दूध दूध दूध वो वाले एड में देखी थी और मैं जब भी देखती थी ना देख देख कर उछल जाया करती थी। तो जब उनकी मूवी चाइना गेट आई उसे मैं कैसे मिस कर सकती थी यार।
0: मिर्ची VCR।
1: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड नहीं मैं इतना डिसीजन मेकिंग में नहीं थी कि सबको उठा के थिएटर लेकर चली जाती कि नहीं नहीं मुझे चाइना के थिएटर में देखनी है। नहीं इतनी हम लोगों की औकात नहीं हुआ करती थी एज किड। ये तो केबल पर जब मूवी आई तो मैंने उसको मिस नहीं किया। एंड वेल ये समीर सोनी की डेब्यू फिल्म तो थी ही थी लेकिन टेक्निकली समीर सोनी वॉज नॉट अ हीरो इन द फिल्म। ही वॉज एक्चुअली डूइंग अ सपोर्टिंग रोल क्योंकि मेन लीड्स तो यार अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, डैनी डोंगजप्पा, ओम पुरी ये सब थे और इस फिल्म में समीर सोनी के ऑपोजिट थी ममता कुलकर्णी। लेकिन क्या आपको पता है कि जो चाइना गेट का पोस्टर बना था ना उस पर ममता कुलकर्णी कहीं नजर नहीं आई थी। और इसके पीछे रीजन ये है कि ममता कुलकर्णी और राजकुमार संतोषी के बीच में एक मेजर फॉल आउट हुआ था। हालांकि इस लड़ाई के बाद वो वापस मूवी करने के लिए आई तो सही लेकिन उसके बाद राजकुमार संतोषी ने उन्हें अपनी फिल्म में ज्यादा प्रमोट नहीं किया और जो पोस्टर बना चाइना गेट का उसमें बाकी सारे एक्टर्स के साथ उर्मिला मातोंडकर की पिक्चर लगाई गई ना कि ममता कुलकर्णी की। हालांकि उर्मिला वॉज इन द फिल्म फॉर जस्ट वन सॉन्ग एंड दैट वॉज छम्मा छम्मा। लेकिन ऑनेस्टली आई मीन पूरी फिल्म करने के बाद भी ममता को इतना नाम नहीं मिला जितना कि उर्मिला मातोंडकर को एक गाना करने के बाद मिला था। लेकिन क्या आपको पता है इस पूरी कास्ट में एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अपना रोल निभाने के लिए न जाने कितने दिनों तक नहाया ही नहीं था। बताऊंगी आपको आगे थोड़ी देर में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: sara ka divana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया। बोलो ये कौन सी मूवी का डायलॉग है?
1: मिर्ची चैट रूम।
2: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और सही जवाब है चाइना गेट। मतलब चाइना गेट में न जाने कितने सारे ऐसे डायलॉग्स थे जो कि आज तक मुझे याद है। एक तो ये डायलॉग, एंड देन देयर वाज दिस वन और डायलॉग जिसमें कि प्लेटफॉर्म का सीन होता है और एक जनाब दूसरे जनाब से पूछ रहे होते हैं कि भाई साहब आपके बजे में कितने घड़े हैं। अगला इंसान कहता है नौने पौ। I still use this dialogue in my life. अगर पौने नौ बज रहे होते हैं और कोई मुझसे पूछ ले कि कितने बज रहे हैं तो मैं नौने पौ ही बोलती हूँ, पौने नौ नहीं बोलती। लेकिन कमिंग बैक टू चाइना गेट, हाँ ये जो फिल्म बनी थी इसके अंदर जो जगीरा का रोल प्ले करने वाले मुकेश तिवारी थे, जिनकी की ये पहली ही फिल्म थी, उन्हें न जाने कितने सारे अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया था फॉर हिज विलेनियस रोल। हाँ, और किया भी क्यों ना जाना चाहिए था, इतना सराहा गया था उनका ये कैरेक्टर बिकॉज उन्होंने काम ही ऐसा किया था। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि अपने कैरेक्टर को बरकरार रखने के लिए, उसका लुक मेंटेन करने के लिए और जगीरा जैसा फील करते रहने के लिए मुकेश तिवारी ने न जाने कितने दिनों तक नहाया ही नहीं था। हाँ जी, वो बिल्कुल अपना परफ्यूम इस्तेमाल किया करते थे, एंड ही डिड नॉट टेक अ शावर जस्ट सो दैट ही लुक्स एज गंदा एज जगीरा। इसे कहते हैं मेथड एक्टिंग। सर्दियों में हम भी यही करते हैं। हाँ, वी ऑल्सो टेक अप अ कैरेक्टर एंड वी वॉन्ट टू लुक लाइक दैट कैरेक्टर, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन कि बहुत सारे लोग शावर नहीं ले रहे होते हैं सर्दियों में। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का बता रहा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आपको दूरदर्शन का गुमशुदा की तलाश सेगमेंट याद है?
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। डीडी वन पर रोज शाम को जब न्यूज आया करती थी तो उसमें एक सेगमेंट हुआ करता था, गुमशुदा की तलाश। याद तो हो गई यार, जो आज हमारे लिए अपने दोस्तों के लिए एक ताना बन के रह गया है कि हम अब उनके लिए कहते हैं कि तुम आते नहीं हो इसलिए हमें गुमशुदा की तलाश है। लेकिन ये कभी एक सीरियस सेगमेंट हुआ करता था जहां गुमे हुए लोग जो है उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही होती थी वाया द टेलीविजन। बट एक राज की बात बताऊं मैं आपको, जब इस सेगमेंट में गुमशुदा लोगों की पिक्चर स्क्रीन पर दिखाई जाती थी ना, तो ऑनेस्टली अगर वो इंसान मेरे पास भी बैठा होता ना तो मैं भी उसे नहीं पहचान पाती। वैसे तो आज भी किसी लड़की का फोटो देखकर उसे ढूंढना मुश्किल हो जाए, क्योंकि बिना मेकअप ऑफ कोर्स किसी का चेहरा समझ नहीं आता और बिना मेकअप कोई आजकल फोटो नहीं खिंचवाता। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, हम बच्चे ना इस सीरियस सेगमेंट को मजाक बना दिया करते थे। जब कोई फोटो स्क्रीन पर दिखती थी ना तो हमारा बोलना शुरू हो जाता था एक दूसरे की टांग खींचते हुए और एक दूसरे को छेड़ते हुए कि अरे देख तेरी फोटो दिखा रहे हैं टीवी पर। और पता नहीं इसमें छेड़ने वाली बात क्या थी और छिड़ने वाली बात क्या थी कि छेड़ने वाला छेड़ता था और छिड़ने वाला भी बुरी तरीके से तुनक जाता था और छिड़ जाया करता था। बट जो भी था भाई, बात ये भी कितनी सही है ना कि आज किड्स हम सीरियस चीज में भी फन ढूंढ लेते थे। एंड आई होप कि आप आज भी इस प्रथा को फॉलो करते हो, बिकॉज लाइफ को हम सीरियसली नहीं ले सकते बाबू मुशाए। क्यों? क्योंकि लाइफ इटसेल्फ इज यूज्ड टू क्रैकिंग जोक्स ऑन अस। इसी बात पर ताल से ताल मिला। कमिंग अप दिस नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: ये वो गाना है जो आपको ऑफिस में वायरल कर सकता है। मोहित चौहान ने गाया इतनी मस्ती में ना इस गाने को, आई स्वेयर। यू नो व्हाई आपको वायरल कर सकता है? क्योंकि अगर इस गाने को आप ईयरफोन्स पे सुन रहे हो ना, तो आप आसपास की दुनिया जो है ना उसको तो भूल ही जाओगे, और फिर आसपास की दुनिया को भूलने के बाद जो आप अपने आप में खो जाओगे और नाचते हुए नजर आओगे और अजीब अजीब सी आप क्रियाएं करते हुए नजर आओगे ना, तो ऑफकोर्स वायरल होना तो बनता है ना बॉस। ये गाना ही वही है जो आपको दुनिया भुला देता है, आपकी करंट प्रॉब्लम्स जो है वो भुला देता है, और आपको सिर्फ और सिर्फ जिंदगी की ताल पर नहीं, इस गाने की ताल पर नचा देता है।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और हम जो म्यूजिक के इतने दीवाने हैं मेरे यारा, वही तो आ जाते हैं रोज रोज ये कहने के लिए कि मान ना मान करो गानों की पहचान। अब सिंस मुझे पता ही है कि आप म्यूजिक के इतने फैन हो और म्यूजिक आपके लिए थेरेपी है, तो यहीं पर मैं एक दाव खेल जाती हूँ और रोज आपके लिए एक सवाल गाने की सूरत में चलाती हूँ और दो गानों की धुनों को मिक्स करके आती हूँ और आपसे पूछती हूँ कि बताओ यार ये दोनों गाने कौन से हैं। तो आज की जो दो धुनों का मिक्स है वो है कुछ यूं, गिव इट a listen।

बस जी, अब आपको डीएम करना है माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और बता देना है कि ये दो कौन से गाने हैं जो अभी आपने सुने। मिर्ची सारा इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, याद रखिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड रहिए विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी, वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आई एम नॉट टू श्योर आपने अर्जुन रामपाल और मनीषा कोइराला की मोक्ष देखी है कि नहीं, क्योंकि ये फिल्म कब आई कब गई पता ही नहीं लगा, लेकिन मैंने जरूर देखी है क्योंकि यार केबल पे जो फिल्म आती थी ना रात के 12 बजे के बाद वो मैं डेफिनेटली देखा करती थी।
2: मिर्ची थग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, ये फिल्म नहीं, लेकिन इस फिल्म का एक गाना ऐसा है जिसकी पूरी की पूरी धुन, यानी कि जो म्यूजिक है इस पूरे पूरे गाने का, वो कट कॉपी पेस्ट है, थैंक्स टू मिस्टर राजेश रोशन जिनका म्यूजिक इस गाने में दिया गया है। द गाना इज दिस वन।

0: जो सनसनाए क्यों जिस्म थर थर आए कोई बताए मुझको।
1: और इसे उठाया गया है फ्रॉम एन आर्टिस्ट जिनका नाम है वैंगेलिस, और इन्होंने ये म्यूजिकल कॉम्पोजिशन बना के बस छोड़ दिया था शायद इसी दिन के लिए कि एक दिन राजेश रोशन आए, यही म्यूजिक ऐसा का ऐसा उठाएं और इसको अपने गाने के बेड पे लगाएं और गाना चलाते जाएं।

फिलहाल के लिए डेफिनेटली नॉट दिस ट्रैक, लेकिन कमिंग अप अनदर वन आपके लिए, झूम जाओगे। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हम आपके एक और एक ऐसी फिल्म है जिसको मैंने 175 बार देख लिया होगा और आज भी देयर इज अ डे जब मूड बनता है और हम एक दूसरे को कहते हैं हम आपके एक और देखे क्या।
2: ये है 90 की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा। देखो यार जज करना है तो जज कर लो। मैं तो भाई हूँ सूरज भरजातिया फैन, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। और हम आपके कौन को इतनी बार देखने के बाद वर्ड टू वर्ड, डायलॉग टू डायलॉग और सीन टू सीन मुझे चीजें याद हैं। नाउ देयर इज अ सीन जब घर में खुशखबरी आती है, यानी कि बच्चे की किलकारी जो है वो सुनाई देती है। सब हॉस्पिटल में जो थिएटर होता है ऑपरेशन थिएटर, उसके बाहर वेट कर रहे होते हैं कि कब बच्चे की किलकारी आए और धिकताना गाना वहीं से ही शुरू होता है, राइट। एंड जब डॉक्टर चाची जो है वो बाहर आती हैं और ये खबर सुनाती हैं कि लड़का हुआ है, एट दैट टाइम सलमान खान एकदम एक्साइटेड होकर हिमानी शिवपुरी को अपनी गोद में नहीं उठा लेते, दैट इज डॉक्टर चाची इन द मूवी हम आपके हैं कौन। उस वक्त दैट सीन वॉज एक्चुअली नॉट प्लान्ड, वो सलमान खान ने एकदम से कर दिया था। एंड हिमानी शिवपुरी का इस पर रिएक्शन ये था कि उन्होंने

हल्के से ना सलमान खान को एक चाटा मार दिया था, बिकॉज वो चौंक गई एकदम से कि ये क्या हुआ. एंड शी इन एन इंटरव्यू टोल्ड कि यू नो सलमान खान वॉज अ प्रैंकस्टर एंड यू नो ऐसी हरकतें वो कुछ ना कुछ करते ही रहते थे और ये भी एक वैसी ही सी हरकत थी. अब ये सारी चीजें जो है उस सीन में कैमरे पे कैप्चर हुई, तो सूरज भरजातिया ने भी डिसाइड किया कि इस सीन को रखते हैं, हम इसमें टेक नहीं लेते हैं बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये अच्छा लग रहा है. एंड एक्चुअली ये कितना अच्छा लग रहा है. आई एक्चुअली लव दिस सीन जब वो डॉक्टर चाची को गोद में उठा के बच्चे की तरह खिला रहे होते हैं. आज के जमाने में है कोई माइका लाल जो ऐसा कर सकता है? ना मुन्ना ना, बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं. यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: डियर, आजकल के जमाने के नेम लेबल और हमारे टाइम में स्टिकर कहलाने वाले
2: यादों को चिट्ठी।
1: आज स्टेशनरी देखती हूँ ना तो चौंक जाती हूँ। आजकल तुम्हें पता है, जो तुम्हारी आज की पीढ़ी है उन पर तो नाम लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उन पर नाम टाइप ही आते हैं मेड टू ऑर्डर। लेकिन बैक इन आवर स्कूल टाइम्स, स्कूल खुलने से पहले इट यूज्ड टू बी अ टास्क कि हम मम्मा के साथ बैठकर अपनी बुक्स और कॉपीज पर कवर चढ़ाया करते थे, फिर उसके बाद तुम्हें चेरी ऑन द टॉप की तरह बुक्स पर लगाया करते थे, और फिर लास्ट लेग होता था सब किताबों पर हमारा नाम, क्लास और सेक्शंस लिखे जाना। और तुम होते भी तो कितनी वैरायटी के थे यार, कहीं फ्लावर्स वाले तो कहीं कार्टून्स वाले। और बीटी तो तब होती जब स्कूल अपनी तरफ से बोरिंग वाले लेबल्स खरीदने को कंपल्सरी कर चुके थे, तब लगता था कि कितना काम है यार। लेकिन आज जो काम करते हैं उनके बीच लगता है कि यार वो भी क्या मस्त काम हुआ करता था जिसे हम कितनी सीरियसली लिया करते थे। एक दिन अपने फन के लिए आई डिसाइडेड कि आज मैं अपने नेफ्यू की किताबों पर कवर्स चढ़ाऊंगी और स्टिकर्स लगाऊंगी और उनपे उसका नाम, क्लास, सेक्शन ये सब लिखूंगी। मैं बड़ी एक्साइटेड थी इस काम को लेकर। फिर पता लगा कि मेरी भाभी ने तो किसी को पैसे देकर ये काम करवा लिया है और लेबल पर नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एवरीथिंग इज प्रिंटेड। सुन रहे हो, तुम्हारी आज की जनरेशन भी ना काफी तरक्की कर चुकी है, लेकिन मुझे फिर भी तुम पसंद हो। तुम्हें आज भी अपने ख्यालों में पढ़ती तुम्हारी सारा। एंड नाउ कमिंग अप अ ट्रैक जो आज तो प्यार मोहब्बत की याद दिलाता है, लेकिन ये डायलॉग हमने क्लास मॉनिटर्स से बहुत सुना है जब हम बातें खूब किया करते थे क्लास में, तो क्लास मॉनिटर्स यही कहा करते थे कि कुछ ना कहो। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: Sara ka deewana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
2: Oof, ye sawal hum aksar pyar se karte hi karte hain. Kaun sa sawal? भाई कैसेट की साइड ए का दूसरा गाना
3: मिर्ची 90s कैसेट
2: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में दिस नशीला गाना
4: प्यार तूने क्या किया ए प्यार तूने क्या किया
2: बट डू यू नो इस गाने की म्यूजिक की इंस्पिरेशन एग्जॉर्सिस्ट 2 मूवी की रीगन थीम से ली गई है But isn't it cool कि पल में डराने वाली म्यूजिक को बड़ी खूबसूरती से प्यार में गिराने वाली म्यूजिक बना दिया और ये काम करने वाले इंसान थे द म्यूजिक कंपोजर ऑफ दिस ट्रैक संदीप चौटा और इस गाने में ना मुझे ये लाइन बहुत ऐप लगी कि पहली दफा उसे देखकर होने लगा कुछ ऐसा असर खुद से हुई मैं बेखबर मैं हूँ यहाँ दिल मेरा है वहाँ अरे अरे अरे अरे आप कहाँ चल दिए अभी तो ये गाना आपको पूरा सुनना है यार तब इस गाने में गहराई से खो जाइएगा पर पहले मेरा खुदा हाफिज कबूल तो करिए तो इसी के साथ मैं आपसे कहती हूँ हम है राही प्यार के लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते बाकी यहाँ के अलावा मैं आपको मिली जाती हूँ ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा अपना ख्याल रखिएगा और हम फिर मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम बट नॉट द सेम डे स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सोचो कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो कि तुम्हारा एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, हाँ, उसमें तुमने अपनी तन मन धन सब लगा दिया हो, एंड देन देर इज अ प्रोजेक्ट जो तुमने ऐसे ही साइड में कर लिया, टाइम पास के लिए कर लिया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो तुम्हारा एम्बिशियस प्रोजेक्ट फेल हो गया और जिसको तुम टाइम पास समझ रहे थे वो हिट हो गया. सो एक्चुअली में ऐसा हुआ था बच्चन साहब के साथ. कौन सी फिल्म थी वो अभी बताऊंगी आपको, जो उन्होंने ऐसे टाइम पास सोच करके कर दी थी. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. आई विल लेट यू नो कुछ गानों के उस पार, क्योंकि अब स्टूडियो में आ गई है आपकी प्यारी श्रेया. यानी उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, लेकिन इस जमाने की श्रेया के साथ. सो कम राइट बैक.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और आज ना एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करने वाली हूँ जो बच्चन साहब की ऐसी टाइम पास फिल्म थी। इस फिल्म को उन्होंने रोज एक घंटे सुबह बस इतना ही टाइम दिया था, एंड ही थॉट कि ये फिल्म कुछ खास करने नहीं वाली है। Meanwhile, he was shooting for a very, very ambitious picture. वो पिक्चर बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई, लेकिन ये पिक्चर हिट हो गई। हाँ जी, तो ये हुआ था फिल्म याराना के साथ। तो होता ये है कि इस फिल्म के लिए ना भाई, जब राकेश कुमार who was the director of the film, वो बच्चन साहब के पास आए, बच्चन साहब ने उन्हें साफ मना कर दिया कि उनके पास डेट्स ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उन डेट्स पे सिलसिला मूवी को शूट कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब वो बच्चन राकेश कुमार बच्चन साहब के सेट के और स्टूडियो के चक्कर लगाया करते थे, तो एक दिन उनको टेबल पे बच्चन साहब की अपॉइंटमेंट डायरी दिख गई। उस डायरी में उन्होंने देखा कि सुबह 8 बजे के पहले बच्चन साहब फ्री हैं। अब उन्होंने कहा भाई ये डेट्स तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन सुबह 8 बजे का टाइम तो हर डेट पे अवेलेबल है। तो वो बच्चन साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि बस आप इतना कर दीजिए कि रोज सुबह 7 से 8 ओनली 1 आवर एवरी डे, इतना मेरी फिल्म याराना को दे दो। बच्चन साहब को भी लगा कि 1 घंटे में क्या हो जाएगा, चलो ठीक है मैं दे देता हूँ, मैं थोड़ा और जल्दी सुबह उठ जाऊंगा। बच्चन साहब ने वो 1 घंटा दिया। याराना पूरी पिक्चर अमिताभ बच्चन के साथ इस 1 घंटे में शूट हुई थी, 7 to 8 AM इन द मॉर्निंग। और जब सिलसिला और याराना रिलीज हुई, सिलसिला में जहाँ पे उन्होंने बहुत ढेर सारा काम भी किया था, एक्चुअली बॉक्स ऑफिस पे हिट हो गई थी ये पिक्चर याराना। इसकी बड़ी सारी बातें मेरे पास, कम राइट बैक। मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अगर बच्चन साहब सेट पे कुछ डिमांड कर देते थे तो वो होना ही होना था। ऐसा कोई नहीं था सेट पे जो हम तुम्हारे बाप हैं की बात ना सुने। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, एंड ऐसे ही कुछ हुआ मूवी याराना के सेट पे। सो होता यह है कि नीतू सिंह की ना उसी समय शादी होती ऋषि कपूर से, एंड शी वाज मिसिंग हिम। तो जब उन्होंने कॉल करने की कोशिश की तो वहां पे ना ढेर सारी बारिश होती है कोलकाता में, एंड इसीलिए नेटवर्क उस टाइम पे वैसे भी बहुत प्रॉब्लमैटिक होते थे, नेटवर्क नहीं होता है। तो उनकी 3 दिन तक ऋषि कपूर से बात ही नहीं हो पा रही थी। याराना के गाने के लिए शूटिंग हो रही थी कोलकाता के स्टेडियम में, एंड सडनली नीतू सिंह started crying zor zor se। बच्चन साहब उनके पास गए और उन्होंने पूछा क्या हो गया, तो उन्हें पता चला कि उनको अपने पति ऋषि की बहुत याद आ रही है और प्रोड्यूसर जो है ना वो उनको छुट्टी नहीं दे रहे। प्रोड्यूसर का कहना था कि भाई सेट पे बहुत सारा पैसा लगा है तो हीरोइन अभी नहीं जा सकती। बच्चन साहब ने फौरन प्रोड्यूसर साहब को बुलाया और कहा कि नीतू की अभी टिकट होगी ASAP। मुंबई की टिकट हुई, नीतू सिंह 2 दिन की छुट्टी लेकर के गई और वापस आ गई। वो पूरा गाना जो है ना उसमें बस थोड़ी देर के लिए नीतू सिंह दिखाई गई है, एंड रेस्ट द एंटायर गाना वाज पिक्चराइज्ड ऑन अमिताभ बच्चन। याराना फिल्म का एक गाना इसी बात पे कमिंग ऑन राइट नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: Mitchie. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मूवी की शूटिंग हो रही थी, नाम था मूवी का गंगा की सौगंध, और यहीं पे सेट पे खड़े सब लोगों को कुछ कुछ अंदाजा हो गया। पुरानी जींस पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइंस वीक उस जमाने की कुछ रेट्रो आइकॉनिक लव स्टोरीज के साथ। सो अमिताभ बच्चन एंड रेखा जी की डेफिनेटली बात हो रही है। एंड हुआ ये कि जब आप किसी से बेहद प्यार करते हो, अगर उसके साथ कोई मिसबिहेव करे तो भाई आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद बच्चन साहब। सो दोनों की प्यार की कहानी शुरू हो चुकी थी मूवी दो अनजाने के सेट पर, लेकिन ये किसी को नहीं पता था। सो व्हाट हैपेंड वाज कि रेखा जी जो थी ना, वो एक बंगलो में मिला करती थी, ये उनके दोस्त का बंगलो हुआ करता था बच्चन साहब से। फिर एक फिल्म की शूटिंग शुरू हुई गंगा की सौगंध, और इस फिल्म के दौरान रेखा जी से उनके एक को स्टार ने ना बहुत रूडली बिहेव किया। बच्चन साहब को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने उसको कस के झटक दिया। फिर क्या, वहां मौजूद सारे कास्ट और क्रू को पता चल गया था कि कुछ तो चल रहा है। इसके बाद क्या हुआ बताऊंगी आपको। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जींस।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सबकी बच्चन साहब को अमित बुलाने की इतनी आदत थी कि कई बार तो लोग अपने डायलॉग्स भी कैरेक्टर नेम देने की जगह अमित दे देते थे। पुरानी जीन्स में आप श्रेया के साथ आज याराना फिल्म की बात हो रही है। नीतू सिंह के साथ सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम आ रही थी। याराना फिल्म में बच्चन साहब इज पेयर्ड ऑपोजिट नीतू सिंह। अब होता ये है कि अमित उनका जो निक नेम था ऑन द सेट, सब उन्हें प्यार से फॉन्डली अमित अमित करके बुलाते थे। नीतू सिंह जब जब अपनी लाइन्स बोल रही थी ना, तो उनका कैरेक्टर नेम जो कि था किशन, उसको भूल करके अमित बोल जाती थी। एंड दैट हैपेंड रिपीटेडली। इन फैक्ट मतलब एक जगह है जहाँ पे उनकी फर्स्ट लाइंस है, जैसे ही फिल्म खुलती है, देखो किशन कोई आ गया है। और उन्होंने पता है कम से कम 12 रीटेक्स के बाद इस वर्ड को किशन को बोल पाई थी वो, क्योंकि बार बार वो कह रही थी देखो अमित कोई आ गया है। पुरानी जीन्स में आप श्रेया के साथ ऐसी छोटी छोटी बड़ी बड़ी उस जमाने की बातें, उस जमाने के गानों के साथ लेके आती रहती हूँ। अगर आपको भी मुझे कुछ बोलना है या फिर किसी तरह की शिकायत है, देन ऑफ कोर्स यू कैन रीच आउट टू मी फेसबुक और इंस्टा पे। मेरा हैंडल है RJ Shreya With Love, दैट्स RJ SHREYA With Love।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

डायरेक्टर राकेश कुमार जिन्होंने याराना बनाई विद बच्चन साहब, वो चाहते थे कि एक और फिल्म बने। इस फिल्म की पूरी तैयारी हो चुकी थी, फिल्म का नाम होना था चार्ली। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड आज ना याराना की बात हो रही है। सो बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट रही है फिल्म। इनफैक्ट सिलसिला जिससे ज्यादा उम्मीदें थी, ये दोनों कुछ कुछ आसपास ही रिलीज हुई थी, सिलसिला बॉक्स ऑफिस पे धड़ाम हो गई, बट याराना डिड वेरी वेल। सो हुआ ये कि राकेश कुमार ने फिर बच्चन साहब को पटा लिया कि एक और फिल्म साथ में करेंगे और वो होनी थी चार्ली। इसकी स्क्रिप्ट तैयार हो गई थी, कास्ट सेट हो गई थी, अमिताभ बच्चन वाज गोइंग टू बी पेयर्ड विद पद्मिनी कोल्हापुरी, लेकिन बीच में हो गया एक अनफॉर्चुनेट हादसा एंड दैट वाज कुली। कुली पे क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। तो बच्चन साहब वॉज बेड रिडन एंड हॉस्पिटलाइज, ऑल ऑफ दैट हैपेंड। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि राकेश कुमार ने एक और पिक्चर बनाई और उस पिक्चर का नाम था कौन जीता कौन हारा। क्योंकि राकेश कुमार बच्चन साहब को अपने लिए लकी चाम मानते थे, तो अमिताभ बच्चन ने इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद भी और कुली की इंजरी से रिकवर करने के बाद इस मूवी में स्पेशल अपियरेंस दिया ओनली फॉर हिज डायरेक्टर। पुरानी जीन्स में ना बहुत सारी बातें होती है मेरे पास शेयर करने की, लेकिन हाँ इस जमाने की नहीं, उस जमाने की, सिर्फ मैं हूँ इस जमाने की। एंड इफ यू वांट टू रीच आउट टू मी, कुछ कहना है, कुछ लिखना है, तो आरजे श्रेया विद लव इस नाम से हूँ फेसबुक पे भी और इंस्टा पे भी।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

फिर क्या बच्चन साहब ने अपनी फेवरेट रेखा जी को बुला लिया। पुरानी जीन्स पे या फिर श्रेया के साथ याराना फिल्म की बात हो रही है। अब ये वही टाइम था जब नीतू सिंह, जो इस फिल्म की हीरोइन थी ऑपोजिट अमिताभ बच्चन, उनकी नई नई शादी हुई थी ऋषि कपूर से। वो ऑलरेडी ऋषि कपूर को बहुत मिस करती थी सेट पे, तो एक बार तो बच्चन साहब ने प्रोड्यूसर से लड़ करके बीच शूटिंग के दौरान उनको मुंबई वापस भिजवा दिया कि भाई ऋषि से मिलाओ और वापस आओ। लेकिन डबिंग के लिए उनकी अनअवेलेबिलिटी काफ़ी टाइम तक रही, ऐसे में मूवी रिलीज ही नहीं हो पा रही थी। तो फिर अमिताभ बच्चन ने क्या किया, उन्होंने अपनी फेवरेट रेखा जी को बुलाया। रेखा जी ने आधी फिल्म में नीतू सिंह के लिए डबिंग की है, तो अगर आप ये फिल्म देखोगे ना, आपको आधी फिल्म से नीतू सिंह के डायलॉग्स जो हैं वो रेखा जी की आवाज़ में सुनने को मिल जाएंगे। पुरानी जीन्स पे ना आज इसी फिल्म की जम करके बातें कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं आप और मैं मिलके। सो कम बैक राइट हियर। मेरा नाम है श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इस एक फिल्म की वजह से अमिताभ बच्चन और यश चोपड़ा साहब में हमेशा के लिए एक दरार पड़ गई थी। पुरानी जीन्स पे आपू श्रेया के साथ और आज ना याराना फिल्म की गप्पे मार रहे हैं हम लोग। सो होता ये है कि याराना और सिलसिला एक ही साथ शूट होती है, मतलब ऑलमोस्ट यू नो एक ही टाइम पे शूट हो रही होती है, लेकिन सिलसिला पहले कंप्लीट हो जाती है। सिलसिला के कंप्लीशन के बाद बच्चन साहब को जाकर के ना अपने डायलॉग्स की डबिंग करनी होती है। बच्चन साहब हमेशा से अपने डायलॉग्स हमेशा से फटाक से डब कर देते थे, वो नहीं चाहते होते थे कि भाई किसी भी फिल्म की रिलीज पोस्टपोन हो। तो सिलसिला में वो कुछ अलग करने लगे थे। सिलसिला में पहले उन्होंने 1 घंटे की डबिंग शुरू की और उसके बाद वो हर डबिंग को कैंसिल कर देते। यश चोपड़ा साहब तक ये बात पहुंची, उन्होंने कुछ महीने छोड़े, फिर उसके बाद 1 साल छोड़ा और फिर जब इस मूवी को सिलसिला को 2 साल लग गए सिर्फ डबिंग के चक्कर में, उन्हें बेहद गुस्सा आया। उन्होंने जाकर के बच्चन साहब से बात की तो उन्हें पता चला कि बच्चन साहब जो थे वो याराना के फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर भी थे, तो वो नहीं चाहते थे कि सिलसिला और याराना की रिलीज क्लैश हो। आगे एक और रीजन दिया गया है कि क्यों अमिताभ बच्चन सिलसिला की डबिंग पे नहीं पहुंचते थे। अभी आपको बताऊंगी एक और कहानी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स। मैं हूं श्रेया।

0: अमोरे मियो तोवे साय तू। ए, क्या गा रहा है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

एक थियोरी का ये भी कहना है कि अमिताभ बच्चन ने रशेस देख लिए थे मूवी सिलसिला के और उन्हें ये एहसास हो गया था कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप होगी, इंडियन ऑडियंस को ये मूवी अच्छी नहीं लगेगी और इसीलिए वो चाहते थे कि याराना की रिलीज पहले हो जाए। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और आज ना एक ऐसी फिल्म की बात कर रहे हैं जिसने यश चोपड़ा और अमिताभ बच्चन, जिन्होंने कई सारी फिल्में एक साथ की थी, उन दोनों की दोस्ती में दरार ले आई थी। इस फिल्म का नाम था याराना। सो होता ये है कि सिलसिला ख़त्म हो जाती है और सिलसिला की रिकॉर्डिंग जो थी ना वो बाकी थी, एज इन डबिंग बाकी थी। अमिताभ बच्चन का ये रिकॉर्ड था कि वो अपनी डबिंग, अपने डायलॉग्स फटाफट बोल करके ना मूवी को कंप्लीट कर देते थे, लेकिन सिलसिला के रिलीज पे, सिलसिला की डबिंग पे वो पहुंच ही नहीं पाते थे। कई बार उन्होंने कैंसिल किया, कई बार वो सिर्फ एक एक घंटा स्टूडियो आते। यश चोपड़ा साहब पहले तो दोस्ती के नाम पे इसको लेट गो करते रहे। उसके बाद फाइनली एक दिन यश चोपड़ा साहब को पता चला कि बच्चन साहब जो याराना की शूटिंग साइमल्टेनियसली कर रहे थे वो याराना के फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर भी थे और इसलिए वो चाहते थे कि याराना फिल्म पहले रिलीज हो जाए। बच्चन साहब का ये कहना था कि वो सिलसिला के रशेस देख करके पहले ही समझ गए थे कि मूवी जो है वो बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप होगी और इसीलिए वो चाहते थे कि भाई एक फ्लॉप फिल्म उनकी एक सक्सेसफुल फिल्म के पहले ना आए, एंड दैट्स व्हाई यू वांटेड कि याराना पहले रिलीज हो जाए। वेल, इन सब चीजों की वजह से उन दोनों ने उसके बाद कभी काम नहीं किया, यश चोपड़ा एंड अमिताभ बच्चन। इनफैक्ट तब तक काम नहीं किया जब तक बच्चन साहब ने खुद जाकर के मोहब्बतें में यश चोपड़ा से काम नहीं मांगा। पुरानी जीन्स पे इस फिल्म याराना की और भी बातें। कम राइट बैक, मैं हूं श्रेया।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

कोलकाता का भरा हुआ स्टेडियम, 20,000 की पब्लिक एंड बच्चन साहब का ये डांस परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, और आज ना याराना फिल्म के गप्पे मार रहे हैं हम लोग। सो बच्चन साहब ने जब ये गाना सुना, सारा जमाना, ही वॉज वेरी एक्साइटेड। लेकिन जब उनको कॉस्ट्यूम मिली तो ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। ही सेड कि गाना इतना वाइब्रेंट है, इसमें इतनी एनर्जी है, इसमें मेरी कॉस्ट्यूम एकदम फ्लैट लग रही है। तो इस कॉस्ट्यूम में अगर आप ये गाना देखो तो बल्ब्स लगे हुए हैं एंड बल्ब्स ऑन ऑफ हो रहे हैं। ये जो आइडिया था ना, ये क्रिएटिव आइडिया अमिताभ बच्चन ने खुद दिया था ऑन द सेट कि इसमें बल्ब्स लगाओ और उन बल्ब्स का जो ऑन ऑफ वाला बटन है वो मेरे हाथ में दो, जो कि इनविजिबल होना चाहिए। एंड ही सेड कि मैं बीट्स के अकॉर्डिंगली इसको ऑन ऑफ करूंगा। हाउ क्रेजी। अच्छा, जब शूटिंग खत्म हो गई ना इस गाने की, तो क्या हुआ ये भी बताऊंगी आपको। फिलहाल यही गाना सारा जमाना, कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जींस।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सोचो आपको निकल के भागना हो और फैंस को पता चल जाए कि आपकी गाड़ी खराब हो गई हो, और कुछ 100 की तादाद में फैंस नहीं, 20,000 फैंस। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और आज गप्पे मार रहे हम लोग मूवी याराना के। तो वो गाना है ना सारा जमाना, ये कोलकाता के एक स्टेडियम में शूट हो रहा था इन फ्रंट ऑफ 20,000 लाइव पब्लिक। और बच्चन साहब ने खुद अपने व्लॉग में बताया है कि भयानक पुलिस फोर्स उस समय वहाँ पे डिप्यूटेड थी कि वो फैंस को रोक पाए। भाई किसी तरह गाने को रिकॉर्ड किया गया, शूट किया गया, ये सब हुआ, और उसके बाद बच्चन साहब और नीतू सिंह गाड़ी में बैठ करके बस निकलने ही वाले थे कि उनकी गाड़ी फैंस के बीच में ही रुक गई। सो बच्चन साहब सेड ऑन द व्लॉग कि पुलिस फैंस को रोक रही थी पर वो रुक नहीं रहे थे, दोनों थोड़े स्केर्ड भी थे, अमिताभ बच्चन एंड नीतू सिंह। बट आपको पता है उनके फैंस ने क्या किया? जैसे ही उन्हें पता चला कि अमिताभ बच्चन की गाड़ी आगे नहीं चल रही है, फैंस ने एक्चुअली गाड़ी को लिफ्ट कर लिया और लिफ्ट करके उनको होटल के अंदर तक पहुँचाया। दिस इज क्रेजी है ना। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, उस जमाने के किस्से बहुत सारे ढूंढ के लाती हूँ। सो कम राइट बैक।

सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे अभिश्रेया के साथ जाने का टाइम हो गया है, यानी लेट्स हिट द हाईवे। देखो आज का मेरा हाईवे हिट ना एक्चुअली में ये गाना ट्रम्प कार्ड है। ओके, अगर आपको अपनी महबूबा की तारीफ करनी है तो इससे बेहतरीन गाना नहीं हो सकता जो कि रफ़ी साहब ने गाया है कि मैंने पूछा चांद से, देखा है कहीं मेरे चांद सा हंसी, चांद ने कहा नहीं नहीं नहीं। तो जब भी उनको मनाना हो ना, बस इस गाने के बोल बोल दो या फिर ये गाना बैकग्राउंड में लगा दो। ऑन दैट नोट, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ। कल मिलते हैं, गुड नाइट।

0: भाई ये तो बीते दिनों की बात हो चुकी है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: यही कि अगर फिल्म में बहुत बड़ा स्टार ले लिया हमने तो वो फिल्म चलेगी ही चलेगी, और इस चीज का जीता जागता एग्जाम्पल फिलहाल है यश स्टारर टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स विच हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ डिजास्टर, क्योंकि इस फिल्म के लॉसेस मेकर्स के लिए हर बैरियर क्रॉस करते जा रहे हैं। यार देखो, यश लेड इस गैंगस्टर ड्रामा के अगर

0: इंडस्ट्री एस्टिमेट्स की बात करें ना तो फिलहाल द टीम इज लुकिंग एट अ लॉस ऑफ रुपीज 300 करोड़। एंड माइंड यू, टॉक्सिक हैपेंस टू बी द बिगेस्ट ऑफ ऑल टाइम फॉर अ फीचर फिल्म इन इंडिया। और बात सिर्फ यहाँ पे ही रुक नहीं जाती है, एक और नया इशू सामने आया है। तो फिल्म जब रिलीज नहीं हुई थी ना, उस वक्त उसके ओटीटी राइट्स के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स ने कुछ अमाउंट ऑफर किया था एंड इट वाज अराउंड 150 करोड़ रुपीस की डील। बट मूवी मेकर्स का डिमांड था कि नहीं यार, हम 200 करोड़ से नीचे तो जाएंगे ही नहीं। लेकिन जैसे ही ये फिल्म थिएटर्स में आई, औंधे मुंह गिर गए। हाँ, ये बात और है कि जो इसकी कमाई अब तक हो पाई है वो सिर्फ इसके एडवांस बुकिंग की वजह से ही हो पाई है। एंड यू वोंट बिलीव, अब इस फिल्म को ओटीटी के लिए जो ऑफर मिल रहा है इट इज जस्ट 30 करोड़। एंड दैट इज व्हाई आई से दैट वो बीते जमाने की बात है जब आप सिर्फ बड़े सितारे अपनी फिल्म में लेके फिल्म को चला लेते थे। भैया, ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो चुकी है और चूजी भी। बाकी तो जैसे बच्चे को गुब्बारा काफी, वैसे समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
1: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मैं निकला

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। From glam to guru avatar, और ये हो रहा है एक्टर रजनीश दुग्गल के साथ, जो फिजिक्स वाला के वन ऑफ द रेनाउंड टीचर्स पंकज सजारिया के ऊपर बन रही बायोपिक में लीड रोल निभाने वाले हैं। माइंड यू, फिजिक्स वाला एक रेनाउंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म रहा है फाउंडेड बाय अलख पांडे, एंड उनके ऊपर ऑलरेडी एक सीरीज बन चुकी है विद द नेम हेलो बच्चों। नहीं देखी तो प्लीज देख लो, यू लव इट। बट अब जब उनके ही इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के वन ऑफ द रेनाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टीचर्स दैट इज पंकज सजारिया के ऊपर ये फिल्म बन रही है, देन आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। मनोज बाजपेयी इज महात्मा गांधी। सो फिल्म मेकर सुधीर मिश्रा की अपकमिंग डायरेक्टोरियल में मनोज बाजपेयी महात्मा गांधी के रोल में नजर आएंगे, जिस फिल्म का बैकड्रॉप है इंडिया के इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लेसर नोन 21 डेज पीरियड की कहानी। वैसे अभी तक इस फिल्म को लेकर सारी डिटेल्स अंडर रैप्स रखी गई हैं, बट अभी वाजपेयी साहब का एक लुक जो है वो ऑनलाइन सरफेस हो रहा है, विच डेफिनेटली इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ बज। अर्शद वारसी स्टारर पॉपुलर साइकोलॉजिकल सीरीज असुर की बात करना चाहती हूँ, जिसका थर्ड सीजन इज अंडर मेकिंग, बट इस बार सीरीज के डायरेक्शन का कमाल ओनी सेन ने नहीं उठाया है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम उनके पास कुछ फ्रेश नहीं था टू ऑफर, एंड नाउ द हैट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू डायरेक्टर गौरव शुक्ला, जो इस सीरीज के लीड राइटर और शो रनर रहे हैं ऑन द प्रीवियस सीजन। वैसे अनदर अपडेट इज कि एक्टर एहसान चन्ना ने भी इस सीरीज के स्टारकास्ट को ज्वाइन कर लिया है। और अगर आपको ओनी सेन के बारे में नहीं पता, देन ब्रो, उनकी रिसेंटली आई ऑपरेशन सफेद सागर सीरीज तो आपने देखी होगी। नहीं देखी तो प्लीज देख लो यार, यू विल नॉट रिग्रेट इवन अ बिट ऑफ इट। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: मसाला इज नॉट ऑलवेज आवर क्रेविंग।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: बाबू मोशाय, मैं फिल्मों की बात कर रही हूँ यार, आप कहाँ खाने पीने के ख्यालों में खो गए। सो बेसिकली अगर हम हिंदी सिनेमा की बात करें तो हमारे दिमाग में आता है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, जहाँ बहुत सारा रोमांस, बहुत सारा एक्शन, इंटेंस ड्रामा और इमोशन भरा हुआ होता है। इन शॉर्ट, सब कुछ मसालेदार। बट हाँ, लीक से हटके बहुत सारी फिल्में बन रही हैं और आज पांच कपंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ इन्हीं फिल्मों की बात कर रही हूँ। वेल, लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नंबर 4 पे लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म बधाई हो भाई साहब। 2018 में आई थी ये फिल्म। अब सोचो, आज की डेट में अगर आपको भी पता चलता है कि आपकी माँ प्रेग्नेंट हो गई है, ऐसी सी फीलिंग आपको अगर ना भी आए, आपके आसपास बहुत सारे लोगों में आप देखेंगे। एंड दिस इज व्हाट द मूवी डेल्ट अबाउट। बेसिकली इस फिल्म ने हमें बहुत सारे वैल्यूबल लेसन्स दिए हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सिखाया है कि हमें इलॉजिकली अपने पेरेंट्स को कभी भी जज नहीं करना चाहिए। बेसिकली इस कहानी में जिस तरीके से पेरेंट्स के बीच के प्यार और अफेक्शन को दिखाया गया है, ये दिखाया गया है कि भाई वो भी ह्यूमंस हैं, उनके अंदर भी भावनाएँ होती हैं और भावनाओं में वो भी बह जाते हैं। दैट इज एब्सोल्यूटली ओके, सो प्लीज डोंट मेक अ फस अबाउट इट। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है, देन यू should definitely watch it. Yeah, moving on, number 5 pe let's talk about the film Kya Kehna. 90s kid hone ke nate mujhe ye film kafi zyada pasand hai, main bata sakti hu. And let's be honest, aaj bhi premarital sex aur pregnancy टैबू माना जाता है यार। इस कहानी में एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट किस तरीके से शादी के पहले प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद वो क्या डिसीजंस लेती है अपनी लाइफ के लिए, इज व्हाट द मूवी टॉक्स अबाउट। एंड प्रीति जिंटा वाज जस्ट सो फ्लॉलेस इन इट। वेल, अगर मेरी इस लिस्ट में आप भी कोई फिल्म ऐड करना चाहो, देन फील फ्री टू डू दैट। MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मिलूंगी। इन द मीन टाइम, एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी। इट्स हॉट।

गुड़ी किन खालिया गुड़ वाली चा किन पीती बुआ जी का नाना किन खिचया खिच के मर किन सीटी ओ छंडो।